0: excuse me. What's going on in Forest Lawn?
1: DJ Felix. We got the city on lockdown.
2: It's Friday!
3: ओ मेरा जिया नंद लाला
4: सेंटो में गला ना वाइन
3: तेरी करमवा सुरतिया भी कर गए सुरतिया।